थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: अभवत्।
1: सः मूषकं निगृह्णाति।
0: सः मूषकं गृहीतवान्।
1: तदा मूषकः भीतः भवति।
0: तदा मूषकः भीतः अभवत्।
1: मूषकः सिंहं प्रार्थयते।
0: मूषकः सिंहं प्रार्थितवान्। किमिति? भो मृगराज, कृपया मां मा खादतु, मम विमोचनं करोतु, अग्रे अहं भवतः सहायतां करिष्यामि इति।
1: सिंहः हसति वदति च।
0: सिंह हसितवान् उक्तवान् च।
1: लघु मूषकः मम सहायतां करिष्यति, पश्यामि, इदानीं भवतः विमोचनं करोमि इति।
0: सिंहः मूषकस्य विमोचनं कृतवान्।
1: एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारयति।
0: एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारितवान्।
1: सिंहः जाले पतति।
0: सिंहः जाले पतितवान्।
1: तदा सः उच्चैः गर्जति।
0: तदा सः उच्चैः गर्जितवान्।
1: बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं करोति।
0: बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं कृतवान्।
1: तस्य गर्जनं मूषकः शृणोति।
0: तस्य गर्जनं मूषकः श्रुतवान्।
1: सः सिंहस्य समीपम् आगच्छति।
0: सः सिंहस्य समीपम् आगतवान्।
1: जालं दन्तैः कर्तयति।
0: जालं दन्तैः कर्तितवान्।
1: सिंहः बन्धमुक्तः भवति।
0: सिंहः बन्धमुक्तः अभवत्। मित्रं लघु अपि वरम्। कथां ज्ञातवन्तः वा? अब एक सुभाषित सुनते हैं जिसमें उत्तम मित्र के लक्षण बताए हैं। संस्कृत भाषा में बहुत सारे सुभाषित है, बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित है। यहाँ आप देखिए, बिल्कुल छोटे से सुभाषित में मित्र के लक्षण कितने अच्छे तरह से बताए हैं। पहले सुनिए, बाद में हम अर्थ देखते हैं। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। तो सन्मित्र लक्षणम क्या क्या है, अच्छे मित्र के लक्षण क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला है पापात निवारयति, यानी पाप से वह दूर करता है, पाप करने से रोकता है। योजयते हिताय, अच्छे काम में आपकी योजना करता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। गुह्यम निगूहति, अगर कोई दोष है, कुछ गुप्त रखना है, तो वो गुप्त बात रखने में बहुत समर्थ होता है। गुणान प्रकटीकरोति, मगर अगर गुण है तो गुणों के बारे में वह प्रशंसा करता है, सबको आपके गुण बताता है। आपदगतम च न जहाति, अगर मित्र संकट में है तो वह उसे संकट में, आपत्ति में कभी नहीं छोड़ के जाता। ददाति काले, जब जरूरत है तब अवश्य आके मदद करता है। ये सन्मित्र के लक्षण है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, महात्मानः, महात्मा लोग मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण ऐसे बताते हैं। तो आज हमने सन्मित्र के लक्षण देखे। अब अंत में सवाल पूछते हैं। आज का सवाल है, क्या आप किसी के अच्छे दोस्त है? उत्तर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। श्लोक संख्या 23 तः 30 पर्यन्तम्।
2: श्री गणेशाय नमः।
3: श्री गणेशाय नमः।
2: वेदान्तवेद्ययज्ञेश।
3: वेदान्तवेद्ययज्ञेश।
2: पुराणपुरुषोत्तमः।
3: पुराणपुरुषोत्तमः।
2: जानकीवल्लभश्रीमान्।
3: जानकीवल्लभश्रीमान्।
2: अप्रमेयपराक्रमः।
3: अप्रमेयपराक्रमः।
2: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
3: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
2: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः।
3: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः।
2: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
3: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
2: सम्प्राप्नोति प्राप्नोति न संशयः
3: रामं
2: दूर्वादलश्यामम्
3: पद्माक्षं पीतवाससम्
2: स्तुवन्ति नाम भिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम् सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धम् दशरथतनयम् श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकम् राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय
3: रामभद्राय
2: रामचन्द्राय वेधसे।

0: राम राम रघुनंदन राम राम
1: श्री राम राम रघुनंदन राम राम
0: श्री राम राम भरताग्रज राम राम
1: श्री राम राम भरताग्रज राम राम
0: श्री राम राम रणकर्कश राम

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
0: माता रामो मत्पिता रामचंद्रः।

0: రామచంద్రోదయాలుర్
1: సర్వస్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
0: నాణ్యం జానే నైవ జానేన జానే
1: నాణ్యం జానే నైవ జానేన జానే.
2: స్తోత్ర పఠనం అభవత్. आप जरूर बताइए स्तोत्र पठनम आपको कैसा लगता है. आज की कथा आपके समझ में आई होगी. वो कथा आपने दो बार सुनी, एक बार वर्तमान काल में और एक बार भूत काल में. उसके बाद हमने अच्छे मित्र के लक्षण भी सुने. अच्छे मित्र के लक्षण बताने वाला सुभाषित सुना. अपना भाषा पठन बहुत अच्छा चल रहा है. क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? जरूर जरूर बताइए. श्वः पुनर्मिलामः. इदानीं शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति. दुर्जनः सज्जनो भूयात्.

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: करुणा का महत्व. वो दिल भी कैसा दिल जो दुख दर्द से पसीजता ना हो, जिस हृदय में पीड़ित पददलित अनाथ गरीब जनों के लिए करुणा ना हो, वो दिल तो दिल नहीं पत्थर है. जैसे फूल का महत्व सुगंध से, चांद का चांदनी से और सूरज का तेज से है, ऐसे हृदय का महत्व और महानता करुणा से है. संवेदनशील व्यक्तित्व की पहचान है करुणा. पत्थर दिल को पिघलाकर मोम समान मुलायम तथा कमल समान कोमल बनाने वाला अद्भुत गुण है करुणा. करुणा अर्थात दुखी अंतकरण की पुकार सुन हृदय व्यथित होना. पतित पददलित तिरस्कृत बहिष्कृत जन के हृदय में उपजे दुख दर्द के लिए दिल में गहरा स्नेह उत्पन्न होना. बेसहारा और अनाथ लोगों के प्रति मन में दया प्रेम व सहानुभूति प्रकट करना भी करुणा है. सच देखा जाए तो करुण हृदय से ही मानवता रूपी अमृत टपकता रहता है. मानव अंतकरण जड़ नहीं चेतन है और जब जब हृदय की चेतनता जाग उठती है और दृष्टि किसी घायल पर पड़ती है तो सहसा दिल सहम उठता है और करुणा की धारा फूट पड़ती है, जिससे दया का जन्म होता है. जिस पर दया दृष्टि पड़ती है वहाँ स्नेह की सरिता बहने लगती है और स्नेह सरिता के किनारों पर सहनशीलता सहयोग क्षमा भाव उदारता और उपकार के फूल खिलते हैं. इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि सुखी संसार का उद्गम तो करुणामयी हृदय से होता है. समय प्रति समय गौतम बुद्ध ईसा मसीह मदर टेरेसा ऐसे कितने ही करुणा अवतार धरा पर उदित हुए और उनके दिव्य आगमन से असंख्य दुखी जनों के जीवन में सुख का सवेरा हुआ. कोई काव्य हो कथा या कहानी जब तक उसमें करुणा रस नहीं घोला जाता तब तक वह रोमांचक मोड़ नहीं लेती.

चाहे भागवत हो या रामायण या फिर महाभारत, ये सभी काव्य करुणा रस में भी कर ही जनमानस के मन व हृदय में बस पाए हैं। वास्तव में करुणा उदार हृदय का श्रृंगार है। ये वो दिल मंदिर में फैला दिव्य प्रकाश है जो मानव को महात्मा का गौरव दिलाता है। अतः अंतकरण को करुणा के सुदारस से भरपूर कीजिए और दया धर्म का द्वार खोलिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

0: मग ते मी सकाळमध्ये वेळ निरोपाची झाली आहे. केली वेणू धोनी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात. आणि जाण्यापूर्वी आजच्या पुण्यतिथी. नरेश कुमार भारतीय टेनिसपटू यांची आज पुण्यतिथी. पी एस थिरुवेंगडम भारतीय राजकारणी यांची पुण्यतिथी आजच. राम जोशी शिक्षणतज्ञ व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू यांची पुण्यतिथी आजच्याच दिवशी. या होत्या आजच्या पुण्यतिथीनी. याचसोबत मनीषा निरोप घेतीये. उद्या पुन्हा येईन आज. पण तोपर्यंत तुम्ही ऐकत रहा वेणू धोनी 90.4 एफ एम के एल ई कनसु. ನಮಸ್ಕಾರ
1: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಕೆಎಲ್ಇ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 ಎಫ್ ಎಂ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8:00 to 8:15 ವಾರ್ತೆಗಳು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 8:15 to 8:30 ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 8:30 to 9:00 ಮಧುರ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9:00 to 9:30 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. 9:30 to 10:00 ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 10:00 to 12:00 ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. 12:00 to 12:30 ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಪದ ಸಿರಿ. 12:30 to 1:00 ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾವಸಂಗಮ. 1:00 to 1:30 ಹಾಸ್ಯವನಲು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 1:30 to 2:00 ಮರಾಠಿ ಸಮಯ. 2:00 to 2:15 ವಾರ್ತೆಗಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 2:15 to 4:00 4:00 to 4:30 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4:30 to 5:00 ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5:00 to 7:35 ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. 7:35 to 7:45 ವಾರ್ತೆಗಳು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 7:45 to 8:00 ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 8:00 to 8:15 ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 8:15 to 9:00 ನಮ್ಮ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೆಲ್ಲುಸಿರೆ ಸವಿಗಾನ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
0: ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 ಎಫ್ಎಂ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಕನಸು ಪೆ ಆಪ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ಸುನೆಂಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ನ್ಯೂಸ್.
2: ಶ್ರೀ ಕರ್ವೆ ತೀರಂದಾಜ್ ಬನ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸ ರಚಾ ಔರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇ ಭಾರತ್ ನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೋ 72 ರನ್ ಸೆ ಹರಾ ಕರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ 8ವೀ ಬಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕಾ ಖಿತಾಬ್ ಜೀತಾ. ಅಬ್ ಸಮಾಚಾರ ವಿಸ್ತಾರ ಸೆ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है. 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है. श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
3: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है. हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा.
2: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
2: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
4: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
2: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
7: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
2: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देश शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
8: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
9: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
10: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मेक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर

0: दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार ना बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई कनसु। मैं हूं आपके साथ मनीषा। दोस्तों, ढोल ताशों की गूंज, फूलों की खुशबू और चारों ओर गूंजता एक ही जयकारा, गणपति बाप्पा मोरिया। आज हम लेकर आए हैं गणपति बाप्पा को समर्पित एक खास कार्यक्रम, जिसमें सुनेंगे श्री गणेश जी की रोचक कथाएं और उसी के साथ गणेश फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है ये हम सुनने जा रहे हैं। हमारे साथ है संस्कृति चोपड़े और के वैष्णवी, जो बीएमएस की छात्रा है काहिर श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय और हॉस्पिटल की। तो चले सुनते गणेश जी का ये विशेष प्रोग्राम केएलई वेणुधुनी 90.4 एफएम पे।

केली सोसाइटीज डॉक्टर प्रभाकर कौर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्योर फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एंड अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ केली सोसाइटीज डॉक्टर प्रभाकर कौर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर नेहरू नगर बेलागावी कॉल 08312473777

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। और आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पे एक विशेष प्रोग्राम हम सुनने जा रहे हैं। शब्दों में मिठास, भावों में अपनापन और दिलों को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी दिवस के इस प्रोग्राम में अभी हम सुनेंगे अदिति कुटरे को, जो लिंगराज कॉलेज की BA की छात्रा है। तो ज्यादा समय न गवाते प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सुनते रहना वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू।
1: आज 14 सितम्बर, सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अदिति कुटरे, KLE संस्था के लिंगराज स्वायत्त महाविद्यालय बेलगावी के कला शाखा की छात्रा, आज आपको हिंदी भाषा पर आधारित सुप्रसिद्ध कविता सुनाने वाली हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है पहली, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिं को सूल। इसका अर्थ, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल आधार है। जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का ज्ञान नहीं प्राप्त करता, तब तक उसके मन की पीड़ा और मानसिक संताप दूर नहीं हो सकते। दूसरा, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि जब सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। इसका अर्थ, अंग्रेजी पढ़कर व्यक्ति अनेक गुणों में कुशल हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान न होने पर वह अपनी संस्कृति और मूल पहचान से ही दूर हो जाता है। तीसरा, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोए। इसका अर्थ, सच्ची उन्नति तभी मानी जाती है जब परिवार और समाज की भी उन्नति हो। केवल अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचना उचित नहीं है। चौथा, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हिय सोय, लाख उपाय अनेकयो भले करे कि न कोय। इसका अर्थ, अपनी भाषा की उन्नति के बिना वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। व्यक्ति चाहे कितने भी उपाय कर ले, अपनी भाषा की उन्नति के बिना विकास अधूरा होगा। पांचवा, एक भाषा एक जीव एक मति, सब घर के लोग तब बनते है सबनो सो मिटत मूर्त सोग। इसका अर्थ, जब परिवार और समाज के लोग एक भाषा और एक विचार से जुड़े रहते हैं, तब उनमें एकता आती है और अज्ञान तथा दुख दूर होते हैं। छठवा, और एक अति लाभ यह या मैं प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। इसका अर्थ, अपनी भाषा में ज्ञान और शिक्षा की बातें समझाने का एक बड़ा लाभ यह है कि वे आसानी से लोगों तक पहुँचती है। सातवा, ते ही सुनी पावे लाभ सब बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और मुंह कबहू नहीं होए। इसका अर्थ, जब ज्ञान अपनी भाषा में दिया जाता है तो उसे सुनने और समझने वाला हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है। अपनी भाषा की यही विशेषता है। आठवा, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहू भाषा माही प्रचार। इसका अर्थ, दुनिया के अलग अलग देशों से कला शिक्षा और विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार अपनी भाषा में करना चाहिए। नौवा, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मत हु विविध भाषा विविध लखात। इसका अर्थ, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं विचार और संस्कृतियां है। इस विविधता के कारण कई बार मतभेद और समस्याएं उत्पन्न होती है। दसवा, सब मिलतासो छांड के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहु अहो भ्रातगण आए। इसका अर्थ है, इसलिए सभी लोगों को आपसी भेदभाव छोड़कर अपनी भाषा की उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। मुख्य संदेश भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल विचार है कि अपनी भाषा का ज्ञान सम्मान और विकास समाज की प्रगति का आधार है। दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन अपनी भाषा और संस्कृति को भूलकर की गई उन्नति अधूरी है। हिंदी का अर्थ, रामकुमार वर्मा जी की एक सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है मेरी हिंदी। मेरी हिंदी का अर्थ यही, वाणी तुम रहना निर्विकार, जैसे इतना है महाकाश जिसमें नक्षत्रों का निनाद, अविरत गति से होता रहता उठता न कोई विवाद, लघु लघु तारों को भी समेट बनती ध्वनियों की धवल धार, उस ज्योति पर्व में किरण किरण का कितना है कोमल प्रसार, गति द्रुत हो या विलंबित हो गूंजे वाणी का स्तार तार। मेरी हिंदी का अर्थ यही, वाणी तुम रहना निर्विकार। जैसे इतना व्यापक समीर जिसमें न रहा है दिशा भेद, निर्गंध पुष्प को भी छूकर जिसको न कभी कुछ हुआ खेद, जो विषम प्रभंजन रूप तोड़ता हठवादी सब शैल श्रृंग, पर नव प्रभात के द्वार द्वार पर सींच रहा छवि की उमंग। ऐसा समीर जो सांस रूप से जीवन की करता पुकार, मेरी हिंदी का अर्थ यही वाणी तुम रहना निर्विकार। जैसे जलती है महाअग्नि ढलता जिसमें भीषण प्रकाश, अज्ञान रूढ़ियों के शव पर हंसता है क्षण क्षण महानाश, रख छद्म वेश धन अंधकार जो छिपा रहा है क्षितिज रेख, उसके विघटन के लिए शक्ति बन हिंदी लिख दे भाग्य लेख, निष्कलुष बने संपूर्ण विश्व मिट जाए भेदगत अहंकार, मेरी हिंदी का अर्थ यही वाणी तुम रहना निर्विकार। जैसी बहती है सहज धार जिसमें जीवन का है प्रवाह, प्रतिपल आगे बढ़ने का ही जिसमें वृत है अनुपम अथाह, जिसकी बूंदों के कण कण में है नवल सृष्टि का तरल रूप, जिसकी लहरों का सहज गीत तट की वीणा पर है अनूप, लघु बुद बुद ने भी मिट मिट कर मानी जीवन में नहीं हार, मेरी हिंदी का अर्थ यही वाणी तुम रहना निर्विकार। जैसे सजती है सृष्टि पुनः लय सुरभित तनवंगी तरंग, वैसी शोभा से सजे राग रंजीत हिंदी के सहज अंग, संस्कृति के सुरभित सुमन सजे भूषित हो सरस प्रयोग व्रत, बहुरंगी विहंगो के कलरव में स्वयं चला आए वसंत, तब जन मन के ही सुमन सजे बन सरस्वती के कंठ हार, मेरी हिंदी का अर्थ यही वाणी तुम रहना निर्विकार। अगली कविता गगन गिल जी की है जिसका शीर्षक है मैं जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार एकांत से अपने, बदल चुका था रंग दुनिया का, अर्थ भाषा का मंत्र और जप का, ध्यान और प्रार्थना का, कोई बंद कर गया था बाहर से देवताओं की कोठरिया, अब वे खुलने में न आती थी, ताले पड़े थे तमाम शहर के दिलों पर होठों पर, आंखें ढक चुकी थी न मालूम झिल्लियों से सुनाई कुछ पड़ता न था, मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, रंग हो चुका था लाल आसमान का, यह कोई युद्ध का मैदान था, चले जा रही थी जिसमें मैं लाल रोशनी में शाम में, मैं इतनी देर में आई बाहर कि योद्धा हो चुके थे अदृश्य, शहीद युद्ध भी हो चुके थे अदृश्य, हालांकि लड़ा जा रहा था अब भी सब ओर कहां पड़ रहा था, मेरा पैर चीखा आती किधर से पता कुछ न चलता न था, मैं जब तक आई बाहर खाली हो चुके थे मेरे हाथ, न कहीं पट्टी न मरहम सिर्फ एक मंत्र मेरे पास था, वही अब तक याद था किसी ने मुझे वह दिया न था, मैंने खुद ही खोज निकाला था उसे एक दिन अपने कंठ की गूगों में से, चाहिए थी बस मुझे तिनका भरकुशा, जुड़े हुए मेरे हाथ ध्यान प्रार्थना सर्वम शांति के लिए, मंत्र का अर्थ मगर अब वही न था, मंत्र किसी काम का न था, मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, बदल चुका मर्म सा था। अगली कविता है राजेंद्र यादव जी की जिसका शीर्षक है भाषा का अक्षर। कवि कहते हैं हम सब अक्षर है, अक्षर हरे कागज पर हो या सफेद पर, खुरदरे में हो या चिकने में, टोपी पहने हो या नंगे सर, अंग्रेज हो या हबशी, उन्हें लिखने वाला कलम पार्कर या हुनरसल, लिखने वाली उंगलियों में क्यूटिक्स लगा हो या मेहंदी, अक्षर अक्षर ही है शब्द वह नहीं है, अमर होते हुए भी अपने आप में वह सुना है, अक्षर अर्थ वहन करने का एक प्रतीक है माध्यम है, अक्षर अक्षर का ढेर टाइप केस में भरा सीसा मात्र है, शब्द बनाता है अक्षर अक्षर का संबंध, वही देता है उसे गौरव गरिमा और गांभीर्य, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, हम सब अक्षर है और सभी मिलकर एक सामाजिक सत्य को अभिव्यक्ति देते हैं, सत्य जड़ नहीं है चेतन है, सामाजिक सत्य एक गतिमान नदी है, वह अपनी बाढ़ में कभी हमें बहा देती है बिखरा देती है, कभी कभी नदी बह जाती है तो घोंगे की तरह हम किनारों से लगे झूलते रहते हैं, इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं, शब्द बनते हैं वाक्य बनते हैं और फिर नए सामाजिक सूत्र को वाणी देते हैं, क्योंकि मरते हम नहीं हैं, हम अक्षर जो है शब्द बनकर सत्य को समोना हमारी सार्थकता है, वाक्य बनना हमारी सफलता। हमें पढ़ो, हमारा एक व्याकरण है, हमारा एक व्याकरण है। अब हम अनुभव जी की एक सुंदर कविता पढ़ेंगे जिसका नाम हिंदी है। यह कविता 2021 की हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हिंदवी कविता प्रतियोगिता में पुरस्कृत कविता है। कविता कुछ इस प्रकार है। बिस्तर किसी का हो उस पर लेटे कोई, नींद उसका वरण करेगी। भाषा भी बिस्तर है, किसी की हो उसे बोले कोई, भाव उसका वरण करेंगे। खिड़की किसी की हो उससे देखे कोई, दृश्य उसका वरण करेंगे। भाषा भी खिड़की है, किसी की हो उसे देखे कोई, सत्य उसका वरण करेंगे। रास्ता किसी का हो उस पर चले कोई, मंजिल उसका वरण करेगी। भाषा भी रास्ता है, किसी की हो उस पर चले कोई, मनुष्यता उसका वरण करेगी। इसके बाद हम विनोद कुमार शुक्ल की कविता भाषा में शपथ लेता हूँ पढ़ेंगे। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भाषा का अपमान नहीं करूँगा, और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदले रहे इसके लिए मैं बारंबार जन्म लेता रहूं। यह मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों पक्षियों से, कीट पतंगों से भी। यह एक शपथ थी। इसके बाद हम आखिर में अरुणिमा अरुण कमल की कविता विश्व भाषा कहलाएगा हिंदी सुनेंगे। देश का परचम फिर एक दिन लहराएगा हम देखेंगे, अपनी भाषा संग हिंदी विश्व पर छाएगा हम देखेंगे। तेज इसके दीप्त प्रभावित सब होंगे हम देखेंगे, हर देशवासी जब हिंदी पर इतराएगा हम देखेंगे। तेरे सुंदर शब्दों या तेरी अभिव्यक्ति का क्या कहना, कहावतें हो या फिर तेरे मुहावरों का क्या कहना। कविता के सोपानों पर हम जब तक चाहे चढ़ते जाए, डूब ही जाना हो तो इसके भवरों का ही क्या कहना। देश नहीं विदेशों में भी छा जाएगी देखना तुम, कश्मीर से लेकर केरल तक यह आ जाएगी देखना तुम। हर देश में इसके सीखने वालों की होगी तब होड़ ऐसी, हिंदी भी एक दिन विश्व भाषा कहलाएगी देखना तुम। श्रोताओं, हिंदी के ये खूबसूरत रंग सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए है। जैसे माथे पर सजती है एक सुंदर सी बिंदी, वैसे ही हम सबकी शान हमारी प्यारी हिंदी। रेडियो पर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगी कि अपनी भाषा से जुड़े रहिए, अच्छी कविताएं पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंदी।

ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हिंदी दिवस के अवसर पे हमने अदिति कुटरे को सुना जो लिंगराज कॉलेज की BA की छात्रा है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

0: 1120 आणि 9071000074.
1: For the first time in Hubballi, a golden opportunity for new entrepreneurs, young entrepreneurs, startup founders and aspiring self-employed individuals. Turn your ideas into income and build a strong foundation for your dream business by attending this one-day skill development workshop, Empower 365, from idea to company, on Sunday, 18th of October 2026. This workshop will help you transform your business ideas into successful ventures, develop essential entrepreneurial and business skills, learn practical strategies for starting and growing a profitable business, gain insights and inspiration from experienced entrepreneurs. Take the first step towards becoming a successful and profitable entrepreneur. Register today. Contact 9513519666. Geekona Success Strategy.
0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। दोस्तों, हिंदी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति और हमारे भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। हिंदी दिवस के इस खास अवसर पर आइए अपनी प्यारी हिंदी भाषा का सम्मान करें और इसी के चलते आज के इस प्रोग्राम में हम सुनने जा रहे आर्या कारेकर को, जो BA की छात्रा है KLE लिंगराज कॉलेज बेलगावी। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सुनते रहना वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसो।
2: माथे की बिंदी जैसे चेहरे की पहचान होती है, वैसे ही हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी में अपनापन है, हिंदी में सम्मान है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी शान है। KLE वेणु ध्वनि FM रेडियो 90.4 चैनल के हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर देश विदेश में बैठे हमारे सभी श्रोताओं को मैं KLE संस्था के लिंगराज स्वायत्त महाविद्यालय बेळगावी की कला शाखा की छात्रा आर्या कारेकर का सादर प्रणाम। हिंदी भाषा का महत्व। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इन सभी भाषाओं का एक अपना विशेष महत्व है। हिंदी भी भारत की एक प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी केवल बातचीत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, साहित्य, परंपरा और भावनाओं से जुड़ी हुई भाषा है। हिंदी भाषा बहुत सरल, मधुर और प्रभावशाली मानी जाती है।

भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है। हिंदी हमारे लिए भावनाओं को सरल और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। हम अपने सुख, दुख, प्रेम, सम्मान, खुशी और भावनाओं को हिंदी में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी के शब्द में हमें अपनापन और मिठास दिखाई देता है। यही कारण है कि हिंदी हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा या परिचित भाषा में बात करता है तो उसके विचार अधिक स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। हिंदी भी करोड़ों लोगों के लिए ऐसी ही आत्मीय भाषा है। हिंदी और भारतीय संस्कृति। हिंदी का संबंध भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा है। भारत की अनेक परंपराएं, लोक कथाएं, धार्मिक और सामाजिक विचार हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। भारत के त्योहार, रीति रिवाजों को लोक परंपरा का वर्णन हिंदी में बड़ी सुंदरता से किया जाता है। हिंदी ने हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति होती है। यदि हम अपनी भाषा और संस्कृति को भूल जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान से भी दूर हो सकते हैं। इसीलिए हिंदी का सम्मान करना अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना भी है। हिंदी का साहित्यिक महत्व। हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध और विशाल है। हिंदी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी और आत्मकथा जैसे अनेक विधाएं हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अनेक महान साहित्यकारों का योगदान रहा है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने हिंदी को एक नई ऊंचाई दी है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में समाज की वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत किया है। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से समाज को सच्चाई, प्रेम और मानवता का संदेश दिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय संस्कृति और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और सामाजिक समस्याओं के बारे में भी समझाता है। हिंदी राष्ट्रीय एकता में सहायक है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, यह हमारी विशेषता है। अलग अलग भाषाओं के बावजूद लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश के अलग अलग राज्यों के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कई बार हिंदी के माध्यम से बातचीत करते हैं। इस प्रकार हिंदी विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संपर्क माध्यम बनती है। हिंदी लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में काम करती है। यह देश की एकता और आपसी को मजबूत करने में सहायता करती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। हिंदी का सम्मान करने का अर्थ दूसरी भारतीय भाषाओं का अपमान करना नहीं है। हमें हिंदी के साथ साथ तमिल, मराठी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम और अन्य सभी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का महत्व। शिक्षा मनुष्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विद्यार्थियों के लिए ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है जिससे वे अच्छी तरह समझते हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हिंदी में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, समाजशास्त्र और अन्य विषयों के अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज हिंदी में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के संबंधित सामग्री भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इंटरनेट के कारण विद्यार्थियों को हिंदी में शैक्षणिक सामग्री आसानी से मिल जाती है। इसीलिए हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने और अपने विचार व्यक्त करने में सहायता करती है। अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा हमारे लिए केवल संवाद का साधन नहीं है, यह हमारी संस्कृति, साहित्य, भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी ने भारत के लोगों को जोड़ने, राष्ट्रीय भावना को मजबूत बनाने और भारतीय संस्कृति को दुनिया को दिखाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और इसके विकास में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही हमें भारत के सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हर भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हम जितनी भाषाएं सीखेंगे उतनी ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन अपनी भाषा को कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की आवाज़ है और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। इसीलिए हमें हिंदी को केवल एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि अपने जीवन और संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि हिंदी का सम्मान करें, हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी को आगे

ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणु धोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हिंदी को अपनाएं, हिंदी को आगे बढ़ाएं और अपनी भाषा पर गर्व करें। इसी संदेश के साथ हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के एपिसोड में हमने सुना आर्या कारेकर को, जो केली लिंगराज कॉलेज की BA की छात्रा है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणु धोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

0: इंडियन कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव।
1: कॅन्सर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटते।
0: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कॅन्सर हॉस्पिटल।
1: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येते।
0: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचा किरण केली कॅन्सर हॉस्पिटल।
1: मिळणाऱ्या सुविधा हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कॉलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
0: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कॉलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार।
1: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव येते।
0: फोन नंबर 08312552500 आणि 247377।
1: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099।
0: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल बेळगाव येते।
2: Attention all aspiring health leaders, here's an exciting opportunity from the School of Public Health under KLE Academy of Higher Education and Research, Belagavi. School of Public Health invites you to join the future public health leaders through its integrated BPH plus MPH program, a 5-year program open to students from all backgrounds. If you've completed pre-university college in science, commerce or arts, you're eligible to apply. And if you've completed a diploma, you can enter directly into the second year through lateral entry. Already a graduate? You're invited to join our 2-year MPH program. You'll study at a NAC A+ accredited university with world-class campus and infrastructure. You'll benefit from strong field-based learning and community engagement with multidisciplinary faculty. And you'll gain hands-on experience at the Kaher Health and Demographic Surveillance Site with national and international collaborations including TJU USA, Umeå University Sweden and more. Plus funded research projects supported by the NIH, ICMR and UNSW Australia. And the career opportunities are endless. Government and public sector roles, health departments, research centers, academics and even opportunities to pursue a PhD. So don't wait. Apply online today at kaher.edu.in. For more information, visit Kaher JNMC campus, Nehru Nagar, Belagavi or call 0831-244-444, extension 4327.
3: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू। हिंदी दिवस के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। अभी हम सुनेंगे मृदुला गावड़े को जो केली लिंगराज कॉलेज की PUC सेकेंड ईयर की छात्रा है। हिंदी दिवस के अवसर में एक विशेष प्रोग्राम है।
4: सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम मृदुला गावड़े है। मैं लिंगराज उपाधि पूर्व महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग की छात्रा बेलगावी से आई हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी भाषा के विविध रूप के बारे में बोलना चाहूँगी। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भाषा मुँह से निकलने वाली वाणी है। व्यक्ति अपने मन के भावों को भाषा द्वारा प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का विनिमय होता है। समाज में भाषा की उत्पत्ति होती है और भाषा के आधार पर समाज का विकास होता है। विविध सामाजिक संदर्भों के कारण भाषा के प्रयोग में भी विविधता आ जाती है। हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है और विविध कारणों, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि से भारत में हिंदी भाषा के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा आदि। इनमें राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, राजभाषा ये शब्द एक जैसे ही मालूम होते हैं। इन शब्दों के अर्थांतर समझे बिना एक ही अर्थ में इनका प्रयोग करने की संभावना है, किंतु इन शब्दों के समानांतर अंग्रेजी शब्दों के साथ मिलाकर देखें तो इनका अंतर थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। जैसे राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें राष्ट्रभाषा लगभग पूरे राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा है जिसका संबंध राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति से है। राज्य भाषा राज की विशेष भाषा है जिसे राज्य में सरकारी कामकाज करने के लिए संवैधानिक मान्यता मिली है। राजभाषा एक राष्ट्र के राजकाज की भाषा है जो उसी राष्ट्र की भाषा हो सकती है विदेशी भी। भारत के अधिकांश राज्यों में अपनी अपनी राज्यभाषा होती है। भारत में दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास के प्रांतों में प्रचलित खड़ी बोली को बोलचाल की भाषा की हैसियत से विकास की कई अवस्थाओं में गुजरने का मौका मिला। प्रादेशिक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रयोजन मूलक भाषा आदि खड़ी बोली के विकास के विविध आयाम हैं। बोलचाल की भाषा का प्रयोग जनसाधारण के बीच आपसी बातचीत के लिए होता है, अर्थात बोलचाल की भाषा वह भाषा है जिसे सर्वाधिक लोग बोलने के लिए या आपसी बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत में हिंदी पहले एक सीमित प्रांत की बोली मात्र थी। विविध कारणों से यह बोली भारत में सर्वाधिक प्रचलित हो गई। भारत के संदर्भ में इस बात में शंका की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऐसा श्रेय भारत में केवल एक भाषा को प्राप्त हुआ है और वह है हिंदी। बोलचाल की हिंदी के दो रूप होते हैं, सामान्य रूप और मानक रूप। इनमें सामान्य रूप जनसाधारण के आपसी बोलचाल के लिए प्रयुक्त होता है। इस रूप में व्याकरण पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें स्थानीय शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रूप स्थान विशेष के व्यक्तियों के परस्पर बोलचाल के लिए प्रयुक्त होता है। स्थान विशेष में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बोलचाल की भाषा में भी परिवर्तन होता है। भाषा का यह बोलचाल का रूप हर प्रकार के बंधन से मुक्त रहता है। यह मानक या परिनिष्ठित हो यह जरूरी नहीं है। यह रूप विकासशील है अतः स्थायी नहीं है। व्यक्तियों के बीच परस्पर संवाद बोलकर या लिखकर हो सकता है। बोलते वक्त प्रयुक्त भाषा को वाचिक भाषा कह सकते हैं, जो अकृत्रिम रहती है। इस दृष्टि से बोलचाल की हिंदी को वाचिक हिंदी कह सकते हैं। वाचिक हिंदी प्रमुख रूप से दो संदर्भों, औपचारिक और अनौपचारिक में प्रयुक्त होती है। औपचारिक संदर्भ में प्रयुक्त वाचिक भाषा मानक या व्याकरण सम्मत होती है, जबकि अनौपचारिक संदर्भ में व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता। औपचारिक संदर्भ में वाच्यार्थ वाले वाच्यक शब्दों तथा विषयानुकूल शब्दों का प्रयोग करने के कारण परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संदर्भ में सामान्य, अलंकारिक, लक्षण या व्यंजक शब्दों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। कार्यालयों में अधिकारियों के बीच कार्यकाल का कामकाज संबंधी संवाद, किसी नौकरी में भर्ती के इंटरव्यू के समय संवाद, बैंक में खाता खोलने या अन्य किसी बैंकिंग कार्य के लिए बैंक के अधिकारियों से संवाद आदि औपचारिक संदर्भ के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, भारत की संपर्क भाषा है, अतः हिंदी क्षेत्र के व्यक्तियों तथा हिंदी क्षेत्र के व्यक्तियों को वाचिक हिंदी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति हिंदीतर क्षेत्र में पहुंचने पर वहां के व्यक्तियों से हिंदी में बोलते हैं और उन्हें या तो अच्छी हिंदी या टूटी फूटी हिंदी में जवाब मिलते हैं। हिंदीतर क्षेत्र के व्यक्ति के हिंदी क्षेत्र में पहुंचने पर उन्हें भी व्यवहार के लिए सहायक बनती है हिंदी भाषा। उन्हें व्यापारियों से चीजें खरीदने के लिए, रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट लाने के लिए, बस में बस टिकट लेने के लिए, ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के लिए वाचिक हिंदी की जानकारी उपकारी बनती है। जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आता उन्हें हिंदी क्षेत्र में व्यापारियों से धोखा खाने की संभावना है। जरूरी चीजें असली दाम के दुगुना या तिगुना देकर खरीदनी पड़ती है। बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारत में होता है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों, खासकर भारत के दक्षिणी भाग के द्राविड़ भाषा भाषी क्षेत्रों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के व्यक्तियों को हिंदी क्षेत्र के व्यक्तियों से बोलने की नौबत जब आती है तब हिंदी में ही बोला जाता है। जिन्हें शुद्ध हिंदी नहीं आती है वे टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपने विचार अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जो हिंदी में बोल सके उसका भारत के किसी भी कोने में मजे से गुजारा हो जाएगा। प्रत्येक भाषा पहले बोलचाल की भाषा ही रहती है, किंतु आगे चलकर सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों में उसका विकास होता है। उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है, उसका प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ती है तथा प्रयोग क्षेत्रों के अनुसार उसके अलग अलग रूप विकसित होते हैं। हिंदी भाषा के संबंध में भी यही हुआ है। पहले यह बोली थी किंतु आज वह बोली मात्र नहीं है, वह भारत की साहित्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा प्रयोजन मूलक भाषा भी है, मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बोलचाल की भाषा और मानक भाषा में अंतर है। बोलचाल की भाषा बहुत लचीली होती है, उसमें सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए अवकाश है। उसमें भाषा के नियमों का पालन उतना नहीं होता जितना परिनिष्ठित हिंदी में होता है। बोलचाल की भाषा में यही होता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने भाषा ज्ञान के कारण सहज ही शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। अशिक्षितों अल्प शिक्षितों की बोलचाल की भाषा में भाषा के प्रयोग के नियमों से छूट लेने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, अथा बोलचाल की भाषा के प्रयोगों में विकल्प होते रहते हैं। मानक भाषा में विकल्प के लिए स्थान नहीं बिल्कुल बल्कि उसमें सुनिश्चितता रहती है। भाषाई नियमों का पालन करने वाला भाषा रूप है मानक भाषा। संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज जनता के परस्पर संपर्क में आने के लिए सहायक भाषा को संपर्क भाषा कहा जा सकता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा जैसे हिंदी के रूपों की तुलना में संपर्क भाषा कोई विशेष रूप नहीं। एक राज्य के व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए एक राष्ट्र के भिन्न राज्य भाषा वाले व्यक्तियों के बीच संपर्क लिए तथा भिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के बीच संपर्क के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग होता है, अर्थात संपर्क भाषा संपर्क करने के लिए सहायक है। राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक समृद्ध भाषा होती है जिसमें वह अपनी सभ्यता संस्कृति तथा दर्शन को व्यक्त करता है। यह भाषा उस राष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित रहती है, उस राष्ट्र की आत्मा भी रहती है और यही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आत्मा लेकर जीवित नहीं रह सकता, वैसे कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा के सहारे नहीं रह सकता। एक राष्ट्र की अपनी भाषा ही उसे उन्नति के शिखरों पर पहुंचा सकती है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने सही कहा है कि निज भाषा उन्नति है। अब उन्नति को मूल। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा राजकाज करने की भाषा है, अर्थात राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है। यानी राजभाषा एक राष्ट्र के प्रशासन की भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है और 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा से है। स्पष्ट है कि राजभाषा वह भाषा है जो सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्य के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त करके प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। वह संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है, उसका संबंध केवल प्रशासन से है, उसकी शब्दावली परिभाषिक होती है। परिभाषिक शब्द ऐसा शब्द है जिसका व्यवहार किसी विशेष अर्थ के संकेत के रूप में किया जाता है, उसमें विशिष्ट शैली का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। यह जरूरी नहीं है कि राजभाषा संबंधित राष्ट्र की ही कोई भाषा हो। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी जो भारतीयों के लिए विदेशी भाषा थी। एक राष्ट्र की राजभाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है या कोई विदेशी भाषा भी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी संघ की राजभाषा के पद पर भी आसीन हुई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा स्वीकृत हुई। अतः प्रति वर्ष 14 सितंबर को भारत भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। अतः 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 से हिंदी को भी भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। धन्यवाद।

ये था आज का हिंदी दिवस के अवसर पे विशेष प्रोग्राम, जिसमें हमने मृदुला गावड़े को सुना, जो केली लिंगराज कॉलेज की पीयूसी सेकेंड ईयर की छात्रा है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। यह है केली वेणु ध्वनि 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

0: आरोग्य हीच खरी संपत्ती. आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आता विश्वासाचं नाव. केली अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च अंतर्गत केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल बेळगावी. आमच्याकडे अनुभवी डॉक्टर्सची टीम, सुसज्ज ओपीडी सेवा, आधुनिक निदान सुविधा, औषध वितरण सेवा आणि रुग्ण केंद्रित उपचार उपलब्ध आहेत. ऍलर्जी, त्वचारोग, सांधेदुखी, मायग्रेन, श्वसनाचे आजार, पोटाचे विकार, महिला व बालरोग, जीवनशैलीशी संबंधित समस्या आणि दीर्घकालीन आजारांवर होमिओपॅथिक उपचार उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, एअरपोर्ट रोड, बसवंत कुर्ची. फोन नंबर 9448141503 आणि 8123871607. निरोगी आयुष्यासाठी आजच भेट द्या. पहिल्यांदाच हुबळीमध्ये नवीन व युवा उद्योजक, स्टार्टअप व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी. तुमच्या कल्पनांचे उत्पन्नामध्ये रूपांतर करा. तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाचा भक्कम पाया घालण्यासाठी आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष एक दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंट कार्यशाळा एम्पावर 365 कल्पनेपासून कंपनीपर्यंत. रविवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी हुबळी येथे यशस्वी आणि कायदेशीर उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्याची संधी गमवू नका. आजच आपले नाव नोंदवा. नोंदणीसाठी संपर्क 9513519666. गिकोना, सक्सेस स्ट्रॅटेजी.
1: KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್. 2026-27 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. 10+2 PCMB, KCET ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ICAR ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಅನುಭವಿ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08337200120 ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9071000774.
0: आरोग्य क्षेत्रात आपले भविष्य घडवू इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक सुवर्ण संधी केली अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च बेळगावी अंतर्गत असलेल्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ तर्फे इंटिग्रेटेड BPH प्लस MPH हा 5 वर्षांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. विज्ञान, वाणिज्य किंवा कलाशाखेतून पूर्व विद्यापीठ शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येईल. तसेच डिप्लोमा पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेशाची संधी उपलब्ध. पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी 2 वर्षाचा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अर्थात MPH अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहे. NASC कडून A+ मानांकन प्राप्त विद्यापीठात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, अनुभवी व बहुविषयक प्राध्यापक वर्ग आणि समुदायाशी निगडीत शिक्षणाचा लाभ घ्या. काहेर हेल्थ अँड डेमोग्राफिक सर्वेलन्स साईटच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अनुभव मिळवा. तसेच थॉमस जेफरसन युनिव्हर्सिटी अमेरिका, उमेया युनिव्हर्सिटी स्वीडन, PHFI कॅम्पबेल साऊथ एशिया आणि इतर अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबरच्या सहकार्याचा लाभ घ्या. NIH, ICMR आणि UNSW ऑस्ट्रेलिया यासारख्या संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणाऱ्या संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधीही उपलब्ध. सरकारी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, संशोधन क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि आरोग्य व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरच्या संधी तुमची वाट पाहत आहेत. मग वाट कसली पाहताय? आजच ऑनलाइन अर्ज करा kaher.edu.in. अधिक माहितीसाठी भेट द्या काहेर JNMC कॅम्पस, नेहरू नगर, बेळगावी. फोन नंबर 08312444444, एक्सटेन्शन 4327. नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू. और आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पे विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है. अभी हम सुनेंगे संपिता जत्राटी को, जो केली लिंगराज कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है. हिंदी दिवस का एक विशेष प्रोग्राम आप सुन रहे केली वेणुधोनी 90.4 FM पे.
2: सभी को मेरा नमस्कार. मैं संपिता जत्राटी, मैं लिंगराज उपाधि पूर्व महाविद्यालय की वाणिज्य विभाग की छात्रा बेलगावी से आई हूँ. आज इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी भाषा पर बोलना चाहूँगी. आज बात होगी उस चीज़ की जो हम सभी के जीवन में हर दिन हमारे साथ रहते हैं, वह है भाषा. और आज की हमारी खास चर्चा है भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण भाषा हिंदी पर, जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम में कुछ समय हिंदी के नाम करते हैं। एक ऐसी हिंदी के नाम जो कभी माँ की आवाज बनकर हमारे कानों तक पहुँची, कभी दादी नानी की कहानी बनकर हमारे बचपन का हिस्सा बन, कभी कविता बनकर हमारे मन को छू गई, कभी गीत बनकर हमारे ओटो पर आई और कभी किसी अपने के साथ बातचीत में अपनापन बन गई। दोस्तों एक सवाल से शुरुआत करते हैं, भाषा आखिर होती क्या है? क्या भाषा सिर्फ कुछ शब्दों को बोलने का तरीका है? नहीं, भाषा उससे कहीं ज्यादा है। भाषा हमारे विचारों को आवाज देती है, भाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, भाषा हमें एक दूसरे को समझने में मदद करती है और सबसे बड़ी बात, भाषा हमारी पहचान से जुड़ी होती है। जब कोई बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो वह केवल शब्द नहीं सीखता, वह अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना सीखता है, वह माँ को पुकारना सीखता है, वह अपने पिता को पहचान कर उनसे बात करना सीखता है, वह अपने परिवार से संवाद करना सीखता है। यानी भाषा हमारे जीवन की शुरुआत से ही हमारे साथ चलती है। 14 सितंबर और हिंदी दिवस, अब बात करते हैं कि आखिर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघराज भाषा के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बाद में देश भर में हिंदी के प्रचार और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस को विशेष रूप से मनाया जाने लगे। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कहीं भाषण प्रतियोगिता होती है, कहीं निबंध लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी और कई जगह भाषा तथा साहित्य से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमें जरूर सोचनी चाहिए, क्या हिंदी दिवस का मतलब केवल 14 सितंबर को हिंदी बोलना है? बिल्कुल नहीं। अगर हम पूरे साल हिंदी से दूर रहे और केवल एक दिन दिवस मना लें तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। हिंदी दिवस हमें केवल एक तारीख याद रखने के लिए नहीं कहा गया है, यह हमें अपनी भाषा के महत्व को समझाने का अवसर देता है। हिंदी और हमारा रोजमर्रा जीवन, जरा अपने आसपास देखिए। हम सुबह उठते हैं, किसी से कहते हैं सुप्रभात, घर में कोई पूछता है नाश्ता कर लिया, हम कहते हैं हाँ, फिर दोस्तों का फोन आता है, वो पूछता है कहाँ हो, हम कहते हैं बस आ रही हूँ। देखिए हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भाषा कितनी सहजता शामिल है, हमें इसके बारे में अलग से सोचना नहीं पड़ता। हम अपने मन की बात शब्दों के माध्यम से सामने वाले तक पहुंचाते हैं और जब वही शब्द सही भावना के साथ बोले जाते हैं तो वे रिश्तों के और भी मजबूत बनाते हैं। किसी को धन्यवाद कहना हो, किसी को माफ़ कीजिए कहना हो, या किसी को शुभकामनाएं देनी हो, या किसी अपने से कहना हो अपना ख्याल रखना, इन शब्दों में सिर्फ भाषा नहीं होती, इनमें हमारी भावना होती है। हिंदी की खूबसूरती, हिंदी की सबसे सुंदर बातों में ऐसी एक इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता। हिंदी में हम बहुत सरल शब्दों में गहरी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, ममता, अपनापन, सम्मान, मित्र, करुणा, साहस, उम्मीद। हर शब्द अपने अंदर एक अलग भावना लेकर आता है और हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो हमारे विचारों को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। हिंदी में संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी जैसे अनेक भाषाओं के शब्द भी समय के साथ शामिल हुए हैं। यानी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने समय के साथ बदलावों को स्वीकार किया है और यही किसी जीवंत भाषा की पहचान है। हिंदी और साहित्य, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य की। दोस्तों हिंदी साहित्य की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसके बारे में कुछ मिनटों में पूरी तरह बात करना मुश्किल है। हिंदी साहित्य ने हमें अनेक महान लेखक, कवि और साहित्यकार दिए हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने आम लोगों के जीवन की समस्या और समाज की वास्तविकताओं को अपनी रचनाओं में जगह दी है। उनकी कहानियों में हमें केवल कहानी नहीं मिलती, हमें समाज दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है, रिश्ते दिखाई देते हैं और हमें जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। इसी तरह महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में ओज, साहस, राष्ट्रभावना की झलक मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देशभक्ति, वीरता की भावना को मजबूत किया है। हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी कविता को अपनी विशेष शैली से समृद्ध किया। ऐसे अनेक साहित्यकारों ने हिंदी को केवल एक भाषा भाषा नहीं रहने दिया। उन्होंने हिंदी को विचारों और भावनाओं की एक विशाल दुनिया बना दी है। एक किताब और हजारों दुनिया। दोस्तों, आज हम मोबाइल पर बहुत समय बिताते हैं। हम वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने हाथ में एक किताब भी उठानी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब हमें ऐसी दुनिया ले जा सकती है जहां हम पहले कभी ही नहीं गए हो। एक कहानी हमें किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन समझा सकती है। एक कविता हमें अपनी भावनाओं को समझने में मदद कर सकती है। एक उपन्यास हमें समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए हिंदी दिवस पर अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो हिंदी की कोई अच्छी कहानी, कविता या पुस्तक पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। हिंदी और संगीत। अब अगर हिंदी की बात हो और संगीत की बात ना हो तो बात थोड़ी अधूरी लगती है। हिंदी फिल्मों के गीत हो, भजन हो, कविताएं हो या आधुनिक संगीत, हिंदी शब्दों ने संगीत को एक अलग पहचान दी है। कभी कोई गीत में हमें खुशी देते है, कभी कोई गीत हमें हिम्मत देता है, कभी कोई गीत हमें किसी पुराने पल की याद दिलाता है और कभी कभी कोई गीत ऐसा लगता है जैसे हमारे मन की बात ही कह रहा हो। यही शब्दों की ताकत है। जब शब्द संगीत से जुड़ते हैं तो वे केवल सुने नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। डिजिटल दुनिया और हिंदी। अब जरा आधुनिक समय की बात करें। आज का समय टेक्नोलॉजी का है। मोबाइल हमारे हाथ में है, इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा है, सोशल मीडिया हमारे कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम बन चुका है और इस डिजिटल दुनिया में हिंदी भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। आज लोग हिंदी में एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, हिंदी में पॉडकास्ट करते हैं, हिंदी में ब्लॉग्स लिखते हैं, हिंदी में न्यूज देखते हैं, हिंदी में कहानियाँ सुनते हैं और हिंदी में अपने विचार लाखों लोगों तक पहुँचाते हैं। इससे एक बात साफ है, हिंदी केवल किताबों में बंद भाषा नहीं है। हिंदी बदलते समय के साथ डिजिटल दुनिया में भी आगे बढ़ रही है। युवा और हिंदी। अब बात करते हैं युवाओं की। आज के युवा कई भाषा सीख रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नई भाषा सीखने से हमारा ज्ञान और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। लेकिन कई बार हम अपनी भाषा बोलने में झिझक महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो ज्यादा मॉडर्न लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न होने का मतलब भाषा को भूलना नहीं है। अंग्रेजी सीखिए, नई भाषाएं सीखिए, दुनिया की भाषाएं सीखिए, लेकिन अपनी भाषा को लेकर शर्म या झिझक मत रखिए, क्योंकि एक ऐसी अधिक भाषा जानना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं। भारत को अगर समझाना है तो भारत की भाषाओं को समझना होगा। भारत में अनेक भाषाएं बोलियां हैं। हिंदी के साथ साथ कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, असमिया, कई अन्य भाषाएं हमारी संस्कृति विरासत का हिस्सा है। हर भाषा की अपनी सुंदरता है, हर भाषा की अपनी साहित्यिक परंपरा है, हर भाषा अपने साथ एक संस्कृति लेकर चलती है। इसलिए हिंदी का सम्मान करने का मतलब दूसरी भाषाओं को छोटा समझना नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए मुझे हिंदी पर गर्व है और मुझे भारत की सभी भाषाओं का सम्मान है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अलग राज्य से आता है, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से आता है। दोनों की मातृभाषाएं अलग है, फिर भी वे किसी एक साझा भाषा के माध्यम से बातचीत करते हैं। भाषा उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर देती है। यही भाषा की शक्ति है। भाषा दीवार नहीं, पुल हो सकती है और हमें भाषाओं को पुल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको हिंदी का सिर्फ एक शब्द चुनना हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो तो वह कौन सा होगा? शायद किसी का जवाब होगा माँ, किसी का होगा दोस्ती, किसी का प्यार, किसी का उम्मीद और शायद किसी का सपना। कितना सुंदर है ना, सिर्फ एक शब्द और उसके पीछे पूरी दुनिया की भावना। मेरे लिए हिंदी का सबसे खूबसूरत शब्द में से एक है अपनापन, क्योंकि अपनापन किसी शब्द से ज्यादा एक एहसास है। तो दोस्तों, इस हिंदी दिवस पर हम सब एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। हम हिंदी का सम्मान करेंगे, हम

में पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों से डरेंगे नहीं, हम हिंदी बोलने से शर्म महसूस नहीं करेंगे और साथ ही हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि किसी भाषा को ऊंचा उठाने के लिए दूसरी भाषा को नीचे गिराने की जरूरत नहीं होती। हर भाषा खूबसूरत होती है, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं एक एहसास है। दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पहुँचते हुए मैं एक बात कहूँगी, हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलती हुए देखते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, फैशन बदलती है, हमारी पसंद बदलती है, हमारे रहने और काम करने का तरीका बदलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे साथ साथ पहचान बनकर चलती है, उनमें से एक है भाषा। हिंदी किसी के लिए माँ की लोरी है, किसी के लिए स्कूल की पहली कविता है, किसी के लिए दोस्तों के साथ हंसी मजाक है, किसी के लिए साहित्य है, किसी के लिए गीत है, किसी के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सहज माध्यम है और शायद यही हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी को केवल एक विषय की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत भाषा की तरह देखें, हिंदी बोले, पढ़े, लिखे, साहित्य को जाने, नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़े और सबसे महत्वपूर्ण हर भाषा का सम्मान करें, क्योंकि भारत की पहचान केवल एक भाषा से नहीं बनती, भारत की पहचान उसके अनेक भाषाओं, अनेक संस्कृतियों और अनेक परंपराओं से मिलकर बनते हैं और इसी विविधता में हमारी असली खूबसूरती छिपी है। शब्दों में भाव जगाती दिलों को पास लाती, शब्दों में भाव जगाती है दिलों को पास लाती है, कभी गीत बन जाती है कभी कविता बन जाती है, कभी गीत बन जाती है कभी कविता बन जाती है, कभी कहानी सुनाती है और कभी मन की बात कह जाती है, कभी कहानी सुनाती है और कभी मन की बात कह जाती है। धन्यवाद।

ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप के एल वरुण धोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। संपिता जत्राटी को हमने सुना जो के एल लिंगराज कॉलेज की PUC सेकेंड ईयर की छात्रा है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। ये है के एल वरुण धोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

हेलो नमस्कार सलाम आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास और जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं बेलगावी का सबसे पहला और बड़ा रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त यानी की RJ आयुष। दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और बस फिर वो बात ना करने की वजह से धीरे धीरे धीरे धीरे परेशान होते रहता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर, जिसका मतलब है किसी चीज से उभरना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का ये टॉपिक बड़ा ही डीप थॉट होने वाला है, तो एकदम गौर से सुनिएगा, बिकॉज इन दिस रेडियो एपिसोड वी विल डाइव इनटू द मल्टीफेसेटेड डायमेंशन ऑफ हीलिंग, एक्सप्लोरिंग हाउ इट इंटरसेक्ट्स विद साइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो सुनते रहिए मेरे साथ हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE Kanasu Park।

0: हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। आप ट्यून कर चुके हैं वेनु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु और मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूं। दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर, जिसका मतलब है नर्चरिंग माइंड बॉडी एंड सोल, और या उनको कंडीशन करना, उनको अच्छी हालत में रखना। दोस्तों ऐसी दुनिया में जहां हर रोज हम इंजर्ड या पनिश्ड फील करते हैं या लाइफ की भाग दौड़ में कहीं गुम हो जाते हैं, वहीं ये टर्म या ये कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड हीलिंग, विच टेक्स अस टू प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस। हीलिंग का मतलब सिर्फ शरीर के घाव भरना या घाव भर जाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है हमारे माइंड और सोल का उभरना किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से। दोस्तों हीलिंग ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान गुजरता है, कुछ हील हो जाते हैं तो कुछ उसी सिचुएशंस में साइलेंट बैटल्स फाइट करते रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं या फिर हीलिंग की प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो आज का ये एपिसोड आप ही के लिए है। तो दोस्तों जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी 100% खुश नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है और कुछ ना कुछ मलाल रह जाता है। कई बार हम हर्ट भी होते हैं जिससे हमारे फिजिकल घाव तो भर जाते हैं पर अंदर कई घाव रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मलाल रह जाते हैं जिनका हील होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए जाने आज थोड़ी और गहराई में और साथ ही आपको सुनाएंगे कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु।
1: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु ध्वनि 90.4 FM के एलई कनसु और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम नीलम लोहार को सुनने जा रहे हैं जो केली श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष की छात्रा और लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है। गणेशोत्सव केली श्री बीएम के आयुर्वेदा कॉलेज में कैसे मनाया जाता है इसके बारे में वो हमें बताएंगी। तो चले ज्यादा समय ना गंवाते कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सुनते रहना वेणु ध्वनि 90.4 FM के एलई कनसु।
2: नमस्कार बेळगावी, अ व्हेरी जॉयफुल गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा टू एव्हरीवन लिसनिंग अक्रॉस द सिटी। आय एम नीलम लोहार, फायनल इयर

Hello, welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen, listeners of all the ages to your favorite show, Be Relaxed, only on Venu Dhoni 90.4 KLE Kanasu. दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको physical healing के बारे में बताया, उसके बाद आती है mental और emotional healing, जिससे heal होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Because you fight your own battles, ये ऐसे घाव होते हैं जो दिखते तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर दबे होते हैं. चुभते हैं. स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंग्जाइटी कैन इन्फ्लिक्ट वाउंड्स दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आईज. येट जस्ट एज प्रोफाउंड इन दर इम्पैक्ट, साइकोलॉजी हीलिंग से हील करने के लिए उसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा थ्रू थेरेपीज, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस. इट्स अबाउट कटिंग एवरी थॉट एंड फाइंड दैट इनर पीस, जिससे हमारी लाइफ सॉर्ट होती है और हमारा वो अंदर का बोझ धीरे धीरे धीरे धीरे हल्का होते चले जाता है. दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशंस में हो तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए. जैसे अच्छा वक्त गुजर जाता है, वैसे ही बुरा वक्त भी धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. जैसे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैं सुनाऊंगा आपको कुछ जबरदस्त गाने. तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, आरजे आयुष के साथ.

हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू हमारे शो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूं और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों, कई लोग हील होते हैं स्पिरिचुअलिटी से। दोस्तों, स्पिरिचुअल हीलिंग में आप कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, आप अपना फेथ दिखाते हैं और ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपको सुकून मिले, अच्छा लगे, हीलिंग हो। इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग, लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेस एंड अल्टीमेटली इवॉल्विंग इनटू अ मोर इनलाइटेंड वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। दोस्तों, कई बार हीलिंग होने के लिए माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। किसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी जिससे आपका ध्यान बट जाए और आप धीरे धीरे धीरे धीरे चीजों से हील होने लग जाए, उनसे उभरने लग जाए। जिसे कहते हैं हील होने में म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं सुनाता हूँ आपको कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु। गणपति विशेष कार्यक्रम में मनीष आपका स्वागत करती है। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे भूपेंद्र शेरवी को, जो केली श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है। गणपति और अध्यात्म से आयुर्वेद तक, इस विषय पर हम उनसे सुनेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हम प्रोग्राम शुरू करते। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु।
1: नमस्कार, वेणु ध्वनि के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र शेरवी, केली श्री बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष का छात्र, आप सभी को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बात करेंगे गणपति और अध्यात्म से आयुर्वेद तक। हम गणपति बप्पा का उत्सव हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर गणपति बप्पा से कौन कौन सी शिक्षाएं अपना सकते हैं और आज के समाज में हमारे चारों तरफ चल रही सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नई सोच हो, नया विश्वास हो, हर कदम पर बप्पा का आशीर्वाद हो, मुश्किलें चाहे जितनी भी आए राहों में, हर चेहरे पर जीत की मुस्कान हो। दोस्तों, गणपति बप्पा को हमेशा कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि जो भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। इसी विषय के ऊपर हम आज गणपति जी के अध्यात्म से लेके आयुर्वेद तक उनका संबंध देखेंगे और उनसे क्या क्या शिक्षाएँ हमको लेना है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणपति जी की आराधना में, उनकी पूजा में हम बोलते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कफितम जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। साथियों, इसका भावार्थ होता है कि मैं उन विघ्नेश्वर पार्वती के पुत्र के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूत गणों आदि द्वारा सेवित हैं और जो केथा तथा जामुन जैसे स्वादिष्ट फलों का सेवन करते हैं एवं प्राणियों के शोक का विनाश करते हैं। साथियों, इस आराधना के अंदर हमको कपित और जम्बू फल का जो है उदाहरण देखने को मिलता है। और अगर भगवान गणपति जी को सबसे प्रिय फलों के अंदर दुर्वा, कपित और जम्बू फल का भोग हम नित्य लगाते हैं, इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जम्बू फल और चारू फल, जैसा हम सबको पता है कि गणपति भगवान को मधुर रस की मिष्ठान मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है, उनको मोदक का भोग नित्य लगाया जाता है। तो ये जो कपित और जम्बू फल है आयुर्वेद की दृष्टि में, इनको आमहर लेखन प्रॉपर्टी और ये कफ दोष का शमन करने वाले होते हैं, जिससे कि जो भी प्रमेह होता है, प्रमेह की चिकित्सा के अंदर जम्बू और कपित के जो फल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये नित्य भगवान को भोग के रूप में लगाए जाते हैं, जिनसे कि उनको प्रमेह जैसी व्याधि ना हो। दूसरा आता है दुर्वा। दुर्वा का भी हम उन भगवान श्री गणपति को चढ़ाते हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो पूरे एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों को हम 6 ऋतुओं के अनुसार बांट देते हैं। और हम सभी को अगर स्वस्थ रहना है तो उन्हीं ऋतुओं के अनुसार अपन को अनुकूलित होना पड़ेगा। तो जो हम गणपति जिस महीने में अभी हम मना रहे हैं, ये आयुर्वेद की दृष्टि से एवं हिंदू सभ्यता की दृष्टि से ये शरद ऋतु का समय है। और आयुर्वेद के अंदर हम देखें तो शरद ऋतु के अंदर पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो दुर्वा का जो प्रभाव है वो शीतल प्रभाव में होती है और ये जो है अग्नि को शांत करने वाली होती है, शरीर के अंदर जो भी दाह है उनको शांत करने वाली होती है। तो दुर्वा का भी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक आध्यात्म कहानी भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि एक समय की बात है, गणपति भगवान ने अनल असुर नामक असुर को विनाश करने के लिए जब उनको पूरा निगल लिया था तो वो अपनी अग्नि से जो भगवान के पेट के अंदर दाह उत्पन्न कर रहा था, तो उस दाह से निजात पाने के लिए एवं उस दाह की चिकित्सा या शमन करने के लिए उनको उस समय दुर्वा औषधि दी गई थी। तो ये जो दुर्वा है, इस पर्टिकुलर इस विशेष ऋतु के अंदर हमको दुर्वा का यूज करने का महत्व मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे गणपति बप्पा के उनके शरीर के अंगों के बारे में, और गणपति जी का स्वरूप अपने आप में अनेक गहरे संदेशों को सिमटे हुए है। चाहे उनका विशाल मस्तक हो या उनके बड़े कान हो, छोटी आंखें हो या उनका वाहन मूषक हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्रतीकों के पीछे छिपी शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उनके बड़े मस्तक से। साथियों, जिनका मस्तक बड़ा होता है ऐसा माना जाता है कि वे व्यक्ति, वे पुरुष जो है नेतृत्व करने में कुशल होते हैं, एवं ऐसे लोगों की बुद्धि विस्तृत विचार करने वाली होती है और वो एक ही विचार पर बहुदिशीय आकलन करने वाले होते हैं, अर्थात वो एक सोच को कई अलग अलग दिशाओं से सोचते हैं एवं उसके बाद ही वो हमारे लिए अनुकूलित है या नहीं है इसका विचार करके अपने जीवन के अंदर उसको अपनाते हैं। साथियों, बड़ा मस्तक हमको ये संकेत देता है कि हमें कुछ भी

कि हमें अपनी पूरी सजगता एवं एकाग्रता से ज्ञान पूर्वक तथ्यों का श्रवण करना चाहिए, जिससे हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उस सम्यक ज्ञान से हम जो कर्म करेंगे वो भी निष्फल कभी नहीं होंगे। साथियों, आज के संदर्भ में हमारे आसपास विभिन्न माध्यम उपस्थित हैं जिनसे हमको विभिन्न प्रकार के विचार मिलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो समाचार चैनलों के माध्यम से हो, चाहे वो भक्ति के चैनलों के माध्यम से हो। आज हमारे पास आने के लिए बहुत सारे विचार अलग अलग रास्तों से आते, परंतु चाहे आपको आयु वर्ग के हैं, चाहे है, चाहे बाल हैं, चाहे हैं, हम सभी को उन सुनना चाहिए और ना अपने मन के हिसाब से ही चाहिए कि वो जो सूचनाएं हैं हमारे लिए कितनी या कितने पश्चात ही हमको जो है अंदर हमारे जीवन के अंदर हमको कर्म करने चाहिए। अगला हम बात करने जा रहे हैं गणेश की छोटी और प्यारी सी आँखें। छोटी आँखें हमें महत्वपूर्ण एक संदेश है कि चिंतनशील एवं धीर प्रति ये जो व्यक्ति होते हैं, जो भी पुरुष होते हैं, उनकी आंखें छोटी होती है, वो चिंतनशील एवं गंभीर प्रति के होते हैं। ये छोटी आंखें में सूक्ष्मता से एवं विस्तृत परखने का संदेश देती हैं। छोटी आंखें एक विचार को बहुत बारीकी से बहुत ही सूक्ष्म पहचानने का संदेश दे, क्योंकि साथियों

क्रोध में, आक्रोश में, भाव में आके और मन के विपरीत अवस्थाओं में अगर हम ये निर्णय ले लेते हैं तो हमको उनका फल अनुकूलित नहीं मिलता है और आखिर में जाके हमको उससे जो है दुष्परिणाम ही प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद भी सभी वैद्यों को एवं सभी मनुष्य को भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये निरंतर संदेश देता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को सूक्ष्मता से परखिए और उसके बाद ही अपने जीवन के अंदर अपनाइए। क्योंकि हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वो हमारी शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने को काम आता है, लेकिन जो हम हमारी आँखों से, जो हम हमारे कानों से सुनते हैं वो हमारी बुद्धि के लिए भोजन होता है और जैसा हम श्रवण करेंगे, जैसा हम देखेंगे उसके अनुरूप ही हम भविष्य के अंदर निर्णय लेंगे। साथियों, ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हम किस प्रकार के माहौल के अंदर हम रहते हैं और किस प्रकार का हम श्रवण और चीजों को देखते हैं। हम आगे बात करेंगे श्री गणपति बप्पा की सूंड के बारे में और देखते हैं ये हमको क्या संदेश देती है। साथियों, श्री गणेश या लंबोदर की ये चंचल सूंड हमें सिखाती है कि मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार खुद को अनुकूलित करना चाहिए। ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहती है, चाहे हम एक विद्यार्थी के रूप में देखें, हम एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखें या अभिनेता के रूप में देखें, हमेशा परिस्थिति हमारे अनुकूलित नहीं होती है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हम हमेशा अनुकूल परिस्थिति के लिए ही कार्य करते हैं, परंतु फिर भी परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती है। यहाँ पर आवश्यक ये है कि जैसी भी परिस्थिति हमारे पास है या हमारे सामने है, हम उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को उसमें ढाल लें और उस परिस्थिति का सामना करते हुए सजगता से उसका निर्णय निकालें, उसका समाधान निकालें, तभी हम एक प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि बड़ा जब तूफान आता है, जब भयंकर तूफान आता है, तो उस तूफान के जाने के बाद केवल वो वृक्ष ही खड़े रह पाते हैं जो वायु के वेग की दिशा के अंदर अपने आप को मोड़ लेते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं, जो सजगता से, जो कड़कपन से खड़े रहते हैं, वो उस हवा के बहाव के कारण टूट जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। ये हमको संदेश देता है कि प्रकृति भी उन चीजों को अपनाए रखती है जो परिस्थिति के अनुकूलित होना जानते हैं। जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं होगा, जो परिस्थिति के विपरीत जाना चाहता है, जो वायु के वेग के, पानी के वेग के एवं भावनाओं के वेग के, सोच के वेग के, कर्म के वेग के विपरीत जाना चाहता है, उन सब का बहिष्कार प्रकृति द्वारा आज नहीं तो कल कर दिया जाएगा। साथियों, हम सभी को ये संदेश अपने जीवन में निश्चित रूप से अपनाना चाहिए कि जो भी परिस्थिति हो, हम उसके अनुकूलित होकर अपनी पूरी सजगता से, अपनी पूरे सौभाग्य से, अपने पूरी बुद्धि से उसका निवारण करेंगे और उस परिस्थिति के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अंत में हम देखते हैं कि भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं अध्यात्म में भी प्रचलित हैं और आजकल उसका जो अनुकूलन उदाहरण हम अपने जीवन के अंदर भी जोड़ सकते हैं। मूषक अर्थात हमको संकेत देता है तर्क का या चंचलता का, या अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जरूरत से ज्यादा सोचने का। श्री गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें तो हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा मिलती है। मूषक हमेशा कुछ न कुछ काटता रहता है, वो कभी भी शांति से नहीं बैठता है, वो कभी उछल कूद करेगा, नहीं तो कभी किसी न किसी चीज को काटता रहेगा। यानी अगर हम आज के संदर्भ में समझें, यानी हम आज के समाज के संदर्भ में समझें, तो जरूरत से ज्यादा सोचने की अवस्था। साथियों, आज हमारे समाज के अंदर जो सबसे बड़ा हमारे सामने परिस्थिति उपलब्ध है वो है जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण मानसिक अवसाद एवं मानसिक दुख। और श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और वो बुद्धि के देवता उस चंचल रूपी मूषक के ऊपर विराजमान है। हमको ये संदेश मिलता है कि हमको अपनी बुद्धि पे, हमको
अपनी जरूरत से

welcome back one more time, and you have tuned into Belgium's first radio station, Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu, and you're listening to our show, Be Relaxed. दोस्तों चलिए कुछ strategies की बात मैं करता हूँ, जिससे आप अपने routines में involve कर सकते हैं, heal होने के लिए try कर सकते हैं. पहली, healing through art and expression. जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया music भी एक role play करता है आपको heal करने में, या एक art आप चुन सकते हैं जिसमें आप मन लगाएंगे तो हो सकता है आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो और आप उस हीलिंग से धीरे धीरे निकल जाए. सेकंड, नेचर्स हीलिंग पावर. दोस्तों नेचर हैज अ प्रोफाउंड एबिलिटी टू हील. स्पेंडिंग टाइम इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस स्ट्रेस, बूस्ट योर मूड एंड प्रमोट फिजिकल हीलिंग. दोस्तों जब आप नेचर में होते हो, फ्रेश एयर में होते हो, शाइनिंग सनलाइट, हर वो चीज जो आपको अच्छा महसूस करवाती है, वो आपको एक सुकून देती है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी हील होती चली जाती है. तीसरा, हीलिंग थ्रू फिटनेस एंड न्यूट्रिशन. दोस्तों एक बैलेंस डाइट विद अ प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी ओवरऑल बॉडी को पुरानी डिसीज से भी हील कर सकता है, साथ ही इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से भी कम होता है. वहीं अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, या आपने भी देखा होगा कि आज किसी का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद हर इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिम ही ज्वाइन करता है. जरूरी नहीं है कि वो जिम ज्वाइन करे, बट मोस्ट ऑफ द लोगों की बात मैं कर रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं, वो लोग जिम ही ज्वाइन करते हैं. जिसका मतलब यह है कि फिटनेस भी आपको किसी दौर से, किसी सिचुएशन से उभरने में धीरे धीरे मदद करती है. चलिए दोस्तों एक दो टेक्निक्स और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर.

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु विद आरजे आयुष। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग्स के बारे में। दोस्तों टेक्निक्स जैसे हीलिंग विद टाइम, वक्त एक बहुत बड़ा टीचर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरे वक्त ही क्या मजाल की वो आपकी जिंदगी में टिक जाए, तो वो भी धीरे धीरे गुजर जाएगा और आपका मूड एकदम खुशम खुश यानी हैप्पी हैप्पी हो जाएगा दोस्तों। और आप चाहे तो अपने विचार या थॉट्स या सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में आप अपने किसी दोस्त से शेयर कर सकते हैं, किसी करीबी इंसान से शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो दिल का बोझ होगा वो बट जाएगा। कहते हैं ना कि दुख और सुख बांटने से ही बढ़ता है, तो अगर आपको कोई दुख है तो वो प्लीज कृपया अपने किसी दोस्त से, किसी करीबी आदमी से बांटे, किसी रिश्तेदार से बांटे, किसी दोस्त से बांटे, तो आपका बोझ बहुत हद तक हल्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो है हम आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ और सुनाते हैं आपको एकदम धमाकेदार गाने। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, क्या बात है, स्वागत है, आइए आइए, आप आए, बाहर आई, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। देखिए दोस्तों, हील होना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं इसको इग्नोर करके या ध्यान ना देके। कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसे रोक पाना हमारे हाथ में भी नहीं होता, और ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो हमारे दिलो दिमाग पर एक बहुत ही गहरा सदमा या असर डाल देती है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि कितना वक्त लगता है उन चीजों को एक्सेप्ट करने में, लेकिन उससे निकलने में। सोचिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं रियली ये डिजर्व करता हूँ। वो क्वेश्चन ही आपको हील होने में बहुत मदद करेगा। इफ आई हैव अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, डू आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इट, पूछिए ये खुद को, क्या मेरे पास प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? अगर सॉल्यूशन है तो व्हाई वरी, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है देन व्हाई वरी, यू हैव टू गो थ्रू दिस। टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा और अब धीरे धीरे हील होने चले जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को वक्त दे, वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है। मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कोट ये है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप वॉकिंग, व्हाई विल यू स्टॉप इन अ हेल, करेक्ट नो? जिसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, तो परेशान ना होइए, वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, और आप उस सिचुएशन को पार कर लेंगे और वापिस आपकी जिंदगी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये डीप एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखे हमारे शो बी रिलैक्स पे, और सुनते रहिए हमारा रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू, RJ आयुष के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, शब्बा खैर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए।